0: अच्छा रुको एक मिनट।
1: यस सर। ये किस लिए सर?
0: अरे आज रामनवमी है।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: और सुनो ये सबको बांट देना।

नागिनसी डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले ये लंबी चोटी नागिनसी डोले।

कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना, शादी है बर्बादी। दी दी दी एंड। शेर था चूहा हो गया।

ये पवित्र जल ही गंगा है, इसके सिवा और कोई गंगा नहीं। तथैव तुम स्वयं ईश्वर के स्वरूप हो, अर्थात तुम स्वयं ईश्वर हो। तत् त्वम् असि। आवाज कभी नहीं मरती। उस खाली खिड़की की तरफ देखो, अब आंखें बंद करो और मन की आंखों से देखो उस खिड़की के अंदर।

कवि तुलसीदास उस महाकाव्य की रचना कर रहे हैं जो हर युग में पूज्य रहेगा।

0: ये तो बीज है बाबा।
1: ये नन्ना सा बीज ईश्वर और संसार के बीच की कड़ी है। इसमें एक संभावित जीवन है। इसे थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा प्रेम मिल जाए तो ये नन्ना सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है, जो फल फूल और छाया देगा एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की तरह। लेकिन अगर इसे तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।

प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सबको सीताराम एंड अ वार्म वेलकम टू दिस मॉर्निंग प्रोग्राम पूजा विधि। माय डियर डिवोटीज, बिफोर वी कंटिन्यू लेट अस पुट आवर हैंड्स टुगेदर, क्लास्प आवर हैंड्स एज वी ऑफर आवर ओपनिंग मंत्रस।

हरि प्रेम से बोलो महापति महादेव की जय। माय डियर डिवोटीज, लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश थ्रू द मीडियम ऑफ भजन। एज वी ग्लोरीफाई श्री गणेश,

रामचंद्र की जय। दिस इवनिंग एज वी ऑल गैदर हियर टू जॉइन इन डिवोशंस टू भगवान सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ माय लॉर्ड, Before we commence Katha this evening, let us all at this time listen to beautiful bhajan from members of the group. And first we listen to bhajan from Rishi Sivanarayan. So he do a beautiful bhajan for us at this time. So we go to Rishi Sivanarayan.

कथा इसी केन्द्रम श्री रामचरितमानस। वे भगवान श्री राम लक्ष्मण इन सर्च और सीता देवी। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी इज प्रोसीडिंग टू द त्रिशिमुख माउंटेन वेयर ड्वेल्स सुग्रीव द चीफ ऑफ द मंकीज। एज वी लिसन इन चौपाई